जिह कर्म है तुद रहना बसना सो कर चीत ना आयो। अटल अखंड प्राण सुखदाई एक निमख नहीं तुझ गायो। जहां जाना सो थान विसारियो एक निमख नहीं मन लायो। पुत्र कलत्र ग्रह देख समग्री इस ही मह उर्जायो।

गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाई, बिन गुर राम नाम क्यों त्याई है। गुरमत ले हो तरहो पवद उत्तर, मुक्त पहे सुख पाया। गुरमत कृष्ण गोवर्धन थारे, गुरमत सायर पाहन तारे।

नारायण देखै अहनिस ज्योत निरंतर पेखै आनंद रूप अनूप स्वरूपा गुर पूरै देखाया सतगुर मिलहो।

निर्मल शब्द कमाया, अदृष्टि अगोचर नाम अपारा, अतरस मीठा नाम प्यारा, नानक कौ जुग जुग।

तिस सब किछ सूझै अज्ञानी अंध कमाई हे। मनमुख सहसा बूझ ना पाई, मर मर जम्मै जन्म गवाई।

गुर शब्द पछाता। गुरमुख मरै ना जन्मै गुरमुख, गुरमुख मरै ना जन्मै गुरमुख, गुरमुख शब्द समाहा है, गुरमुख ना

कुसंगत बह सदा दुख पावह दुखो दुख कमाया। सतगुर बाजहु संगत ना होई बिन शब्दे पार न पाए कोई। सहजे गुण रह दिन राती ज्योति ज्योत मिलाया। काया बिरख पंखी विच वासा अमृत जुग है गुर शब्द निवासा। उड़ है ना मूले ना आव है ना जाही निज घर वासा पाया। काया शुद्ध है शब्द विचार है।

गुण निदान मन तन महरव्या, जन्म मरण की जोन ना पव्या, दुख विनाश किया सुख डेरा, जहां तृप्त रहे आगाई है।

सच शाह अडोलै सिद्ध साधक ज्ञानी ध्यानिया कौन तुदनो तोलै पन्नन करण समर्थ है ओपत सब पर लै करण कारण समर्थ है घट घट सब बोलै रिजक समाहे सब सह क्या मानस डोलै गहर गंभीर अथा तू गुण ज्ञान अमोलै।

शब्द बिन कभू न छूटस बिरथा जन्म भयो रहाओ। तन मह काम क्रोध हौ ममता कठिन पीर अत भारी। गुरमुख राम जपहो रस रसना इन विद तर तू तारी। बहरे करन अकल पई होची शब्द सहज नहीं बूझया। जन्म पदार्थ मन मुख हारिया।

जाने। दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण किशु ना जाने, शब्दे मेल मिलाया रहाउ। आन दिन भगत कर है दिन राती, दुविधा शब्दे खोई, सदा निर्मल है जो सच राते, सच बसिया मन सोई। मूर्ख दुविधा पढ़ है।

कोई जिस कौ तुम हर राख्या पावे तिसकै नेड़ै कोई ना जावे। तू जल थल महियल सब तै भरपूर, तू जल थल महियल।

सत संगत साई हर तेरी, जित हर कीर्त हर सुनने, जिन हर नाम सुनया मन पीना, तिन हम श्रे वह नित चरणे, जग जीवन हर त्याए तरणे, अनेक असंख नाम हर तेरे, ना जाही जिहवा इत गणने रहाओ। गुरसिख हर बोलहो हर गावो, ले गुरमत हर जपने, जो उपदेश सुने गुर के रा, सो जन पावे हर सुख घणे।

पंजवां कोट मनोरथ आव है हाथ जम मार्ग कै संगी पांठ गंगा जल गुर गोविंद नाम जो सिमरै

ठाकुर छोड़ दासी कौ सिमरहै मनमुख अंध अज्ञाना हर की भगत करहै तिन निंदा है निगुरे पशु समाना जियो पिंड तन धन सब प्रभ का साकत कहते मेरा अहम बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर भवजल फे।

अंत अपूछे, राज हमारा सद ही निःचल, माल हमारा अखूट अबेचल, शोभा मेरी सब जुग अंतर, बाज हमारी थान थनंतर, कीर्त हमारी कर

हाँ, तब बुझी पूर्ण सब आसा, मिटे अंधेर पहे प्रगासा, अनहद शब्द अचरज विस्माद, गुर पूरा पूरा प्रसाद, जहाँ कौ प्रगट पहे गोपाल, ताँ कै दर्शन सदा निहाल।

हम मूड मुगध किस बूझ है नाही, तू आपे देह बुझाई, जो तुद पहावे सोई करसी, अवर ना करना जाई।

कोट पुजारी करते पूजा, कोट विस्थारन अवरना दूजा, कोट मेहमा जा की निर्मल हंस, कोट उस

सुन सहज महे बुनत हमारी, हमरा झगड़ा रहा ना को, पंडित मुल्ला छाडे दो रहाओ।

ओडा कूप गोज खिन काढ़ै, जो ओडा कूप गोज खिन काढ़ै त्यो सतगुर वस्त लहाइय। जिने ऐसा सतगुर साध ना पाया ते त्रिग त्रिग नर जीवाइय। जन्म पदार्थ पुन

आप संभालिया सेज सुहावी रस बनी आए मिले प्रभ सुख तनी मेरा गुण अवगुण ना बिचारिया प्रभ नानक चरण पुजारिया बसंत महला।

सहज अवल धूड़मणि गाडी चालती, पीछे तिनका ले कर हांकती। जैसे पनकत थ्रू टिट हांकती, सर धोवन चाली लाडली रहाओ, तो भी तो वह बिरह बिराता,

सहेरी प्रया वचन उपहास कहो जो सुरजन ग्रह पीतर आयो तब मुख काज लजो।

मऊ तिस अर्पौ सब सुख जाई, एक निमुख प्रदर्श दिखावे तिस संतन कै बल जाई। करो निहोरा बहुत बेनती, सेवों दिन रह नाई, मान अभिमान हों सक।

पंजवा तांते करन पलाह करे महाबिकार मोह मद माताओ सिमरत नाहे हरे रहाओ साध संग जपते नारायण तिनके दोख जरे सफल देह धन ओए जन्मे सफल देह धन ओए जन्मे प्रभ कै

ताज अभिमहान शरण संतन गहो मुक्त हो है शिन माही जन नानक भगवंत भजन बिना सुख सुपने पी नाही जन नानक

अगम अगोचर अनाथ अजोनी गुरमत एको जानिया सुपार परे नाहीं चित डोले मन ही ते मन मानिया।

सहज तुन उपजै मन साचै निबलाई अगम अगोचर नाम निरंजन गुरमुख मन वसाई। एक समय सब जग तो वरतै विरला एक पछाण शब्द मरै तां सब किछ सूजै अन दिन एको जाने। जिसनो नदर करे सोई जन बूझै होर

नौ तन प्रीत सदा ठाकुर स्यों। आन दिन भगत सुहावी मुक्त भय गुरदर्श दिखाया। जोग जोग

तीर्थ अड़सठ मज्जन नाई सत्संगत की तूर परी उड़ नेत्री सत्संगत की तूर परी उड़ नेत्री सब दुर्मत मैल गवाई रहा जाहर नवी

हाट बिहाजे जिस हर हर कृपा करै हर जन कौ मिलिया सुख पाइए सब दुर्मत मैल हरै हर जन कौ हर भूख लगानी जन तृप्त है जा हर गुण बिचरै हर का जन हर जल का मीना हर बिसरत फूट मरै जिन एह प्रीत लाई सो जानै कह जानै जिस मन धरै।

सतगुर हर हर नाम दृढ़ावै, हर बोलहो गुर के सिख मेरे भाई, हर पौजल जगत तरावै रहाव। जो गुर कहो जन पूजे सेवे, सो जन मेरे हर प्रभ पहावै, हर की सेवा सतगुर पूजहो, कर कृपा आप तरावै, परम भूले।

कन हर बरस सगल जग छाया, पय कृपाल प्रीतम प्रभ मेरे, आनंद मंगल सुख पाया रहा। मिटे क्लेश तृष्ण सब बूझी।

पद ते उधारण कोट जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुरनाम दृढ़ायो। कानड़ा महला पंजवां।

चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी दुख निवारण नारायण सगल भगत जाच है सुख सा।

हार्थ कहै साध संग स्नेह सत्यं सुख्यं बसंत नान कहै। मिथ्यंत देहं खीणंत बलनं बरधंत जरुआ।

उरतहारं कुल है समूह सगल उदहारं बड़ भागी नानक को तारं सिमरणं गोविंद नामं उदरणं कुल समूह न है।

ਕਾਲ ਸਗਲ ਸੁਖ ਰਾਸ ਹਰ ਹਰ ਹਾਂ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ ਬਸ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਾ ਕਰ।

ਸਤ ਸਤ ਹਰ ਸਤ ਸਤ ਸੱਤੇ ਸਤ ਪਣੀਐ ਦੂਸਰਿਆਨ ਨਾ ਅਵਰ ਪੁਰਖ ਪਉ ਰਾਤਨ ਸੁਣੀਐ।

पुरख प्रभ पूरन छिन छिन सिमरहो अगम अपार हो श्री पतनाथ शरण नानक जन श्री पतनाथ।

मुन जन गाव है अचल छला। गावे गुण तोम अटल मंडल वै भगत पाए रस जाने ओ, कब कल सुजा।

श्रवण ता पर सकियाथ, श्रवण गुर अमर सुनिजै, सकियाथ सो ही यो जित ही बसै, गुर अमरदास।

अकथ कथा ज्ञान पंचभूत बस कीने जमतना त्रास। गुर अमर गुरु श्री सत कल युग राखी पत अगन अगन देखत गात चरण कवल जास। गुर

शब्द गुर श्रवण है सुनियो, बिखते अमृत होयो नाम सतगुर मुख पण्यो, लोहो होयो लाल नदर सतगुर जद।

पुन दुखन नास सुखदायक सूरौ जो धरत ध्यान बस तेह नेरे पूरौ पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाहे परेरे जौ हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे।

हर मंदिर वस्त अनेक है नवनिध नाम संहार धन भगवंती नानका जिन्ना गुरमुख लद्धा हर पाल वडभागी गढ़ मंदिर खोजया हर हिरदय पाया नाल मनमुख दह दिस फिर रहे।

ਬਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ।

उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाए एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाए हुक्म अंदर

फेर के अग्गे रखिए जित दिसै दरबार, मोह के बोलन बोलिए जित सुन करे प्यार। अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार, करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। नानक एवे जानिए सब आपे सच्यार, थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन।

गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा इक दे बुझाई सबना जिया का।

मत विच रतन जवाहर माणिक। जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक दाता तो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जानिए नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाए कै जप कीरत जगले, जे तिस नजर ना आवई ता बात ना पुछे के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोस्त रे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोई न सुझ

लोक थाप रखिया जिन सूत जे को बुझे होवे सत्यार तबले ऊपर के ताभार तरती होर परे होर तिस्ते पारतले कमन जोर जी जात रंगा के नाव सब ना लिखिया बुड़ी कलाम यो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता होए केता तान सवाल्यो रूप केती दाप जाने कौन कूट कीता पसाओ एको कवाओ किस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कौन का विचार वारिया ना जावा एक वार जो तू दुबा वैसाई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख बाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख पगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिव लाए तार कुदरत कौन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े यार कूड़े फिराहे असंख मलेच मल पखाहे असंख निंदक सिर करें पार नानक नीच कहे विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख ठाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर पार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुणगाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन ए लिख

लख आगासा आगास ओरक ओरक पाल थके वेद कहन इकवात सैस अठारह कहन कतेबा असलू इक तात लेखा होए ता लिखी है लेखे होए विनाश नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप साला ही साला है एती सुरत न पाया नदियां अते वाहा पवे समुंद ना जानिए समुंद सह सुल्तान गिरहा से ती माल तन कीड़ी तुल न होनी जे तिस मनो न विसरे अंत न सिकती कहन न अंत अंत ना करने देन न अंत अंत ना देखन सुनन ना अंत अंत ना जापे क्या मनमंत अंत ना जापे कीता आकार अंत ना जापे पारावार अंत कारण के ते बिललाहे ताके अंत ना पाए जाहे एहो

ऊंचा नाव एवड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना समाए, केते मंगे जोद अपा।

कौन पंच परवान नदरी करम पवे निशान कच पकाई उठे पाए नानक गया जा पै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पौन पानी वै संतर केते कान महेश केते बरमे कार्त करिए रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते देवी वेश केते देव दान मुन केते रतन समुंद केतिया खानी केतिया बाणी केते पाप नरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत नांत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोड आनंद धर्म खंड की बाणी रूप तिथे कारत करिए बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया ना जाहे जे को कहे पिछे पछताए तिथे करिए सुरत मत मन बुद्ध तिथे करिए

ताके रूप ना कथने जाए ना ओहे मरे ना ठागे जाए जिनके राम वसै मन माहे तिथे भगत वसै के लो करें आनंद सच्चा मन सोए सत खंड वसै निरंकार कर कर वेखे नजर निहाल तिथे खंड मंडल वर पंड जे को कथे तांत ना अंत तिथे लो आकार जीव जीव हुकम तिवे तिवकार वेखे विदसै कर।

नानक कथना करड़ा सार, जट पहाड़ा तीर सुनियार, एरन मत वेद हथियार, पाओ खला अगन तपताओ, पांडा पाओ अमृत चित ताल, करिए शब्द सची टकसाल, जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। श्लोक पवन गुरु पानी पिता, माता तरस महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगल जगत, चंगियाया बुरियाया वाचे तर्म हदूर, कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर, जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। सोदर राग आसा महला पहला इको अंकार, सतगुरु प्रसाद। सो दर तेरा केहा, सो कर केहा, जित बै सर्व

दावन सुदनो पवन पानी बैसंतर दावे राजा तरम द्वारे। गावन सुदनो चित गुपत लिख जानन लिख लिख तरम विचारे। गावन सुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन तेरे सदा सवारे। गावन सुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतियां दरनाले। गावन सुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन सुदनो साद विचारे। गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे। गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले। गावन तुदनो मोहनिया मनमोहन सुर्ग मच पयाले। गावन तुदनो रतन उपाय तेरे अठ तीरथ नाले। गावन तुदनो जोध महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे। गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे धारे। तेई तुदनो गावन जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले। होर के ते तुदनो गावन से मैं चितना आमन नानक क्या बिचारे। सोई सोई सदा सत साहेब साचा साची नाई है भी होती जाए न जाती रचना जिन रचाई। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाय। कर कर देखे कीता अपना ज्योतिष दी वड्याई। ज्योतिष भावे सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई। सो पाता हो सा पत साहिब नानक रहन जाई। आसा महला पहला सुन वड्डा आखे सब कोए केवट वड्डा दिशा होए। कीमत पाए ना कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए। वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई न जाने तेरा केता केवट चीरा रहा। सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई कह ना जाई तेरी तिलवड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा किया वड्याईया। तुदवें सिद्धि किने न पाया कर्म मिले नाही ठाक रहाया। आखन वाला क्या विचारा सिफती परे तेरे पंडारा जिस तू दे तिसे क्या चारा नानक सच सवारन हारा। आसा मेला पहला आखा जीवा विसरे मर जाओ आखन औखा साचा नाओ। साचे नाम की लागे पूख उत पूख है खाए चलिए दुख। तो क्यों विसरे मेरी माए साचा साहिब साचे नाए राव। साचे नाम की तिलवड़ आई आख थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलके आखन पाए वदा न हो वह काट न जाए।

तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला चित सरवर लै पहले निवासा, पानी पावक तिन्हे किया, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेतक मूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया, रहाओ ना हूं जती पति नहीं पड़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिनको ना ही विसरिया, आशा महला पंजवा, पई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे कित न काम, मिल साध संगत पज केवल नाम, संग जाम लाग पव जल तरन कै, जन्म बिरथा जात रंग माया कै, रहाओ जप तप संयम तर्म ना कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहो नानक हम नीच।

नित नित जियड़े संभालियन, देखेगा देवनहार, तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कौन सुमार। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, देवो सज्जन आशीषड़िया, जो होवे साहिब त्यों मेल।

सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहां खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला, औद कटे दिन सुरैनारे, मन गुर मिल काज सवारे रहाओ, ए संसार विकार संसे में, तरयो ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगाए पियावे एव रस, अकथ कथा तिन जानी, जा को आए सोई बिहाजो, हर गुर ते मने बसेरा, निज कर महल पावो सुख सहजे, बहुर न होए गो फेरा, अंतर जामी पुरख विधाते, सरदा मन की पूरे, नानक दास यह

रंग पसाओ मत देख पूला विसर तेरा चितना आवे ना सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद्ध आखा आओ गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखे पाओ मत देख पूला विसर तेरा चितना आवे ना सुल्तान होवा मेल लश्कर तख्त राखा पाओ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ मत देख पूला।

साचा निरंकार निज काए, सुन सुन आखन आखना जे पावे करे तमाए। रहाओ कुसा कटिया।

लेखै बोलन बोलना, लेखै खाना खाओ, लेखै वाट चलाइया, लेखै सुन वे खाओ, लेखै साल वाई है, पढ़े के पुछन जाओ, बाबा माया।